0: सिटीजन्स जो हैं वो आ जाएंगे। डेनिश सिटीजन्स का मतलब यह है कि वो फॉरनर्स, जैसे कि मैं डेनिश सिटीजन हूँ, आप भी डेनिश सिटीजन हैं, लेकिन वो डेनिश जो कि ख़ानदानी तौर पे यहाँ के डेनिश हैं, बॉर्न भी और उनकी फैमिलीज और फैमिली दर फैमिली यहाँ के रहने वाली है, उनके राइट्स भी जो हैं वो मशरू हुए और इन्होंने काफ़ी कानून बनाए। और इसके ऊपर बात करने के लिए कोई ऐसा हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, हम खसूसी तौर पे पाकिस्तानियों के पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं कि जो इस इनके ऊपर बात करें। तो ये चीज़ें जो हैं, अब जो आपने कहा 69 डेज में ये बनी, देखें पहले ये लास्ट लुके गया तो जो SF और दूसरी पार्टी थी उन्होंने कहा कि अगर आपने रेड ब्लॉक में आना है तो ये जो बनेगी हुकूमत इसमें हमारी ज़्यादा सुनी जाए। फिर उसके बाद लार्ज ल्यूके जो था वो चला गया, गेंद जो है वो चला गया ब्लू ब्लॉक के पास। ब्लू ब्लॉक जो है वो इसी बात पे अड़े रहे कि भाई हमने तो जो कानून हैं उनको हद से ज़्यादा सख्त करना और उन पर एप्लीमेंट करना है,
1: ठीक है,
0: यानी जो क्रिमिनल्स हैं उनको निकालना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो सोशल डेमोक्रेट ने कहा कि हमने तो ये ऑलरेडी कानून जो हैं, जब हम PDM की गवर्नमेंट थी हमारे पास सोशल डेमोक्रेट और वेंस्टर और मॉडरेट की हुकूमत थी, तो हमारे जो सपोर्टर्स थे वो यही थे, ऐसा बरा दूसरी पार्टियाँ, तो उस वक्त हमने जो कानून बनाए थे और ब्लू ब्लॉक के साथ मिलके, तो वो सख्तियाँ तो हमने बरकरार रखी। आपको पता है कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने पिछले साल एक फ्लुटरिंग कैंप और जेल बनाई कोसोवा में, या वहाँ पे इन्होंने जेल बनाई, वह यहाँ से उनको अमला जो है वो प्रोवाइड किया गया। अब जो लोग यहाँ पे जिनके केस है या फ्लुटरिंग है या कोई प्रॉब्लम करता है जिनको ये डिपोर्ट कर देते हैं या उनके लंबे केस हैं उनको ये वहाँ भेज देंगे, उससे ये क्या होगा कि एक इंसानियत सोज मसला मरहला शुरू हो जाएगा, यानी कि जो फैमिलीज यहाँ रह रही हैं अगर उनके बच्चे या वो कोई उधर चले जाते हैं तो उनके जो रबते हैं वो बरकरार नहीं रहेंगे, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्दी होगी। और यहाँ पे जो डेनिश उससे ज़्यादा बड़ा क्राइम कर रहा है उसको जो राइट्स हैं वो डेनमार्क के अंदर मिल रहे हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ग्रून लॉ ऑफ डेनमार्क की बहुत बड़ी वायलेशन है। और ये ऐसी वायलेशन है कि जैसे कि आप गजा में देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है, ये बिल्कुल उसी तरह के कानून जो हैं यहाँ पे लागू करके तो इस गवर्नमेंट ने जो है वो बरकरार रखे। और अब भी मुझे यही लगता है कि जो इनका मुआहदे हुए हैं इन पार्टियों के गवर्नमेंट के अंदर जो पार्टीज आई हैं उनमें से सिर्फ दो चीज़ें जो हैं वो इन इस लिस्ट की वाजिया हुई हैं, और वो ये वाजिया हुई हैं कि ये जो है स्कूल के जो बच्चे हैं 22 साल तक उनके लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मैसर करेंगे, बसें ट्रांसपोर्ट वगैरह उनके लिए फ्री होगी, और दूसरा ये है कि ये जो पार्किंग वगैरह का मसला है इसके ऊपर कोपेनहेगन को ज़्यादा से ज़्यादा बंद किया जाए, क्योंकि ये कम्युनिस्ट जो हैं ये साइकिलिस्ट हैं और ये साइकिल पे जाना चाहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें क्या इससे, ये तो अच्छा, इनकी अपनी बात है।
1: तो शाह साहब चले ये तो कुछ ठीक है बुनियादी मसाइल ये भी हैं, लेकिन इसके साथ जो मेन इशू हमारे हैं यहाँ काम की परमिशन और प्लस फैमिली यूनिफिकेशन फैमिली असामफुन इस हवाले से कोई पेशरफ्त हुई है, इन पार्टियों ने कुछ
0: शेख साहब
1: वादा किए हैं?
0: शेख साहब
1: जी
0: वो वही हैं,
1: अच्छा,
0: ना उनको किसी पार्टी ने आगे करना ना पीछे करना। आप ये देखें कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि डेनमार्क के कॉन्स्टिट्यूशन, देखें मैं आपको पहले ये समझाऊं कि ग्रून लॉ क्या है और कानून क्या है।
1: माजरत टाइम ज़रा थोड़ा, मैं चाहूँगा कि बाकी मौजूदात पर भी हम गुफ्तगू करें। इन शॉर्ट मुझे ये बताएं कि ये पार्टियाँ चार पार्टियाँ हैं इनके साथ अभी,
0: ये अभी जो जो उलेनिंग और जो फॉरनर्स का जो मिनिस्टर बने हैं
1: जी जी
0: मार्टिन बुश को,
1: हाँ जी,
0: वो नरम दिल इंसान तो ज़रूर है,

इश्क जब दिल में उतरता है इंसान को दुनिया से नहीं खुद से जुदा कर देता है। जो तेरे दर पे रो लिया वो कभी तन्हा नहीं रहा।